यशोदानंदनि व्रज जन रंजन यशोदा नंदनी व्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी

प्रिय वन जगल पातरुभ्यश्चा कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सो आई बिगिन फ्रॉम टेक्स्ट 49 ऑन पेज 241। यावद् बलिम ते अजा हरामा काले यथा वयम चानम अदाम यत्रा यतो भये सम ता इमे ही लोका बलिम हरन्तो अन्नम अदन्ति अनुहा। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। यावत एज इट मे बी बलिम ऑफरिंग्स ते योर अजा ओ अनबोर्न वन हरामा शेल ऑफर काले एट द राइट टाइम यथा एज मच एज वयम वी चा ऑल्सो अन्नम फूड ग्रेन्स अदामा शेल पार्टेक यत्रा वेयर अपॉन यथा एज मच एज उभा ये साम बोथ फॉर यू एंड फॉर अस ते ऑल इमे दीज हाय सर्टेनली लोका लिविंग एंटिटीज बलिम ऑफरिंग्स हरंता while offering annam grains adanti eat anu ha without disturbance. Translation. O unborn one, please enlighten us regarding the ways and means by which we can offer you all enjoyable grains and commodities so that both we and all other living entities in this world can maintain ourselves without disturbance and can easily accumulate the necessities of life both for you and for ourselves. Perpet, by His divine grace,
a bitch.